घर जरी ताहिरवा शेला पांघरुन नवा भर जरी ताहिरवा शेला पांघरुन नवा।

0: नहीं
1: नहीं
0: हम हैं तेरे साथ।
1: बिल्कुल।
0: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात,
1: क्योंकि

0: सिर्फ बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

0: भूल गए?
1: जानी मेरा नाम,
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम, जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम, राम और श्याम
0: बंडलवान
1: लड़के मिलन गीत गाता चल,
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम।